0: जी भाईजान,
1: मुंबई से एक बहुत बड़ा यूनिट आया है शूटिंग के लिए। वो फिल्म स्टार राज आर्यन भी आए हैं यहाँ पर, तुम्हें उनका ध्यान रखना है, उनको कोई तकलीफ ना हो।
0: जी जरूर।
1: ठीक है, वो हमारे होटल में ही ठहरे हैं। लो आगे।

0: जी भाईजान।
1: मुंबई से एक बहुत बड़ा यूनिट आया है शूटिंग के लिए, वो फिल्म स्टार राज आर्यन भी आए हैं यहाँ पर, तुम्हें उनका ध्यान रखना है, उनको कोई तकलीफ ना हो।
0: जी जरूर।
1: ठीक है, वो हमारे होटल में ही ठहरे हैं। लो आगे।